0: What happened to her mother?
1: Who knows? Rumor is that he left her. पर क्या पता वो बेचारी क्या क्या सह रही थी.
2: मिस ग्रीष्मा देसाई, यू आर फायर्ड. अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से.

0: इसका भाई है छोटा बच्चा।
1: ना ना ना ना मैं खुश हूँ।
2: मौजी फिरोज नाम का बच्चा देखा?
3: आप आगे जाके देखो।
2: छोटा बच्चा देखा आपने?
1: नहीं।
2: एक बार ठीक से देखो मौजी।
1: नहीं।
2: शुक्रिया।